0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

छेनी मुसाफर रेणु रे जी जदने रो। अरे माता रोवरे बारो मास भेनो रोवरे छठी समास तन की तरिया तीन दिन रोवा फेर करे रे घरवास।

0: अरे तू किस रे मारो भाई बंद को तो वाड़ा तारो कोई छे नी रे भड़ा तारे डीले प्रेरो खेच लिए कपड़ा
1: हाँ।
0: अरे आंग वाजे लग जाए डपड़ा दारो सुड़को मार ब्यान हल्दी पाड़ा कतिन के दिले दान डूंगरे माई गाड़ा
1: बोल भाई
0: होटो आनान क्या मोटो पीला कांटो काड़ा पीले दारुन सारी रात जोई सारू बाता बात पड़ा।

0: ने माथानी ई मानव घणो मोटो छ यार कीमत घण जबरदस्त
1: घण मोट छ
0: अरे कहने का कह दिया कित्ता बजाऊ रे ढोल ये एक सुवास तिनी ताले रोमोट
1: खरोच खर्चा
0: ई मानव छ जो पशु का अपनिया हो नर का कुछ न हो अरे नर ने करनी के नर रो नारायण हो
1: खरोच खर्चा
0: नर रो नारायण रो अपने हाथेम छ
1: खरोच
0: सरगे जारो अपने हाथेम छ
1: खरोच खरा
0: नर के पड़े रो अपने हाथेम छ
1: खरोच खरा
0: मां भेने काकी दादी केतानी शाबाश करे रो अपने हाथेम छ
1: अरे भाई वाह
0: आनी ओळो सोळो बोलन मार खान ढोळो सोबेन गटारी कन पड़े रो अपने हाथेम छ
1: वाह भाई वाह रे
0: सेवा।

0: अतनि लेने को हरिनाम देने को अनदान चलने को निनता डूबने को विमान
1: बोल भाई बोल
0: जेन डूबदार से जो मक्कार सरनाई करो थटरण गुर गुर गुर गुर मुस मुस मुस मुस करते हनु
1: देख रे भैया
0: जेन जो नानक्यापन लेन जेन तुकाराम महाराज कहो छ नानपन देख

0: करना क्यों नो छ। अरे कल करे सो आज कर ले, आज करने का अभी कर ले। अच्छी बातें सुध को आज कर लो, मांदी बातें सवार कर लो। प्रभु रामचंद्र भगवान रावण मारन पार दिनो लक्ष्मण ने मिलो। अरे लक्ष्मण राजनीति कूच लानू रे, तो लक्ष्मण ने तो को रावण क्यों अरे सवार करो रो, आज कर लन, आज करो अबज कर लो।
1: बरोबर
0: लड़ाई वेर भी तो सवार कर लो, आची व्याते वेर भी तो आज कर लो। पानी रंग बांध रे पाल, मरे रंग जिंगल रे काल, तारो डूबे रंग कतुई ढाल, तारो बाप बेटो अंग मोटो काल। अरे झल्ली जरा मत कर रे हाल।

0: जगे न जो काल खादा छ अरे हरि नाम ले वाले ना नमस्कार कर छ
1: करण
0: केतानी मारे गोपाल कृष्ण रो नाम प्रभु राम रघुवीर रो नाम माता पिता सेवा अरे जगे माई कूद चाणनु ये जल में माता ने मर्जो रे मर्जो पण जरा कीर्ति रूप वर्जो मर्जो पण कीर्ति कर दो।

0: अरे इंद्र पड़गे भग चंद्र वेगो काळो नारद चुगो अरे नार चुगो भजनेरो चाळो अरे 60,000 वर्ष विश्वामित्र कीदो उतो तप अरे एकज बाई आई ओरकन विद्या वेगी गप अरे भस्मासुर मौनीर सो बजान बलन वेगो खाक
1: वाह भाई वाह।

0: भा
1: हाँ।
0: पद को तो अपने शरीर कहीं जो रोग आगो
1: हाँ।
0: अरे डॉक्टर के चले गए
1: हाँ।
0: डॉक्टर के सहे मन घणो को ताप आवरो था डॉक्टर को नाड़ी तपासन दिठो
1: हाँ।
0: डॉक्टर के लागो भा 105 डिग्री ताप सड़गो रे
1: हाँ।
0: आज 2-3 डिग्री सड़गो तो तू डगर जाई छी
1: डगर
0: जाई छी के तो कहीं केड़ी कामन को नहीं जा रो चार नार खांदे डगर जाई छी
1: हां
0: बस कहीं करू साहब 1000 रुपया दे दे
1: ई
0: दवा दारू ले जो
1: आनी
0: तू को पथ पाल खाटो खरो मत खोग नि के दिनो
1: खाऊनी
0: ठीक सन के तानी 1000 रुपया आयो
1: हाँ।
0: घर आयो अरे भेसिर जामन 3 दाड़े में तो जो पील दो 3 दाड़े जामन पील दो मार बारो जो को हेड़ती सोई सड़ी जो हांडी उड़ा मुंडो को
1: खरोस खार
0: हांडी उड़ा मुंडो को वेगो जो वेगो ढगर को
1: हां
0: ढगर को तो कहती केवड़ी व्यापारन को नहीं जो
1: हाँ।
0: सारी तानन खाड़ी कराना को चार नार खांदे पर ढगर को
1: वाह भाई वाह
0: येरे सारू काय के मिले।

भाई के मिले छ। अरे भगवाने समझारो पत कुन सोचा डॉक्टर गने रो पति वेगो खटो खरो न खादो तो ताप डग जा डॉक्टर समझा न्यानी श्री भगवत गीता कजखंड रामायण हरिपाठ तुकाराम बाबा रो गाता नौना तुम्हारा स्थानी मारे गोपाल कृष्ण ने 84 तोड़े रे पायरी कर बेसे रो तो पत कुन सोचा। अरे आपने घरेरी चटनी भाकरी छरला केरी बना दधा केरी। अरे दूसरे घरेरी शिरापुरी छरखा केरी। अरे आपने घरेर मांद सुना नारा तने लागिरे लंगाए पार। अरे दूसरी नारी रो दीदने रो प्रेम झूठो जो बेटा संगत करिए जो रो कर्म फूटो देवे कंसरे त्राजुन कांटो। अरे तोला उंदार कलियर बेटा नपन तोटो।

0: घन मोड़ च कबीरदास महाराज के मोलो च। अरे कहने का कह दिया कितना बजाऊं ढोल,
1: वाह भाई वाह,
0: एक सुहास्तिनी तालाऊं का मोल
1: बरोबर।
0: अरे तारे तार घरेर मालकन के दी पानी इंदर की
1: है
0: तो पानी की जन बतो कोई दी भार ना भाई ना थे दी बोल रहे भी है
1: हाँ।
0: तो तू काई करे ची मार मालकन दी कोई दी बोल रो सा
1: हाँ।
0: घर कुराड़ी आलाई ची वो ना मैं थार करू कर के
1: खरो खार।
0: अरे वो भाई ना थे दी बोल रहे पर तुझको पेटे में कंपला लाई ची
1: हाँ।
0: अन बेटा कान काटे कुटे कुतरा नहीं गली गली में हिजरा नहीं नन्नर नन्नर कर तो हिंडे ची तो ना लात छूटे नी। अरे गरीब की जोरी सबकी भाभी
1: हाँ।
0: गरीब माल कर शेर भोजाई लागत
1: है।
0: मैं भी दूसरे कान काटे कुटे कुतरा नहीं लोग मारी भी माल कर जबरदस्त भेड़ वो काम ओवड़ी चाड़ो मारो ये ओवड़ी चाड़ो बला लागत बेटा के। अरे अपने बेटे के सिर मुंडाए छुरा लग जाए दूसरे बेटे के गर्दान तोड़े जरा शर्म नहीं आए। आपन मालकने री इज्जत को तो मोट अन गरीबेर का तो नानकीज काय बेटा। अरे

0: अरे परपंच कर रे नेट का कति मत दकाद रे फाटका कामे माई काम हरी नाम रो गुटका पर हरी नाम रो गुटका छेनी रे
1: रे
0: कथि तो ई दाता ने हाटे अंदर के दोई जोड़ा वाड़ा तो काई करे छ मालखने अंदर से हाट करे ना आठ और हरोगार भ्या भाले दाता साठ वो मालकन काई करे रे आठ रुपया में काई हाट करे गी बागवाने कन का तो दादा ये वेंगन कतरा ना वो बागवान का जारी एक रुपया ना तो ऊपर नहीं उतरा पाले जो बिचारी वो काने वेंगन रस एक रुपया में पाला होता वो प्रेसी की कन का तो काले भूर के ला रस दादा ये कू यारी बारना ना तो ऊपर उतरा
1: देख रहे भैया
0: घरेन लिया बेट बेटा धासन आओ यारी मारी यारी आई मर माता आई छोना गज गजड़ी छचारन केड़ा दस वो छचार पड़े बुदन छोलन खाएन देख छो छोड़े रंगा का केड़ा को गजड़ी नवाल छ मुंडे साऊ घालेन के तो खार यगड़ी जा ऊपर ती सड़े का मातो जा छ बारनार केड़ा खाई छ खराई छ लीलजम सदा सुखी आठ बार हाट कराई छ साठ बार दारू फेची नीरलजम सदा सुखी छ तू अरे तो मानस करो तो अक्कल छे नी ढोर करो तो लारा पुतलो छे नी ई जलमा अपनो सेवटावळो कावा।

0: लावा छिटा के लाओ जन आड़ आड़ खानो। अरे नीलगाम आटा पंचे 40 दारू छोड़ दे, आटा पंचे 40 रुपया रो एक किलो तेल लिया कन का एक धोव तेल हांडी में खलाऊंगा ना के। अरे कालो भूर पानी खोरे गुलाबेर फूले ना तार बेले बेट बेट बता रही है
1: खरोच खा
0: मालकल गुलाबेर फूले ना ही रही है तारो पर कर्ज कोनी व। अरे जोजार गले माय मंगलसूत्र भान में लो चीज लाज छूटनु लागी है तो ना। अरे कांजी सोने दागिना गले में घाल दे मालकन चम चम चम की तो तारो भगवान कल्याण करिए। अरे हिजड़ा रावला दूसरे तांडरी साउंड देखन बार सब दियाई ची घरेर मालकनर भूखे मारे ची तार सुगो पापी जगे में छेनी।

एक छटाक तेले माई मावली काई करे रे भा नू करता नहीं ऊंदा इनकी तो एक नदी बूंद पड़ते खमत यारी शेज पड़ गए छोरा गावली माई दीज बूंदेर माई हेट भगला तपरच फक्को वच कर जाच हरोदार पानी खान सत्तो पड़ रे छी अन एक दारू तो छूटे नहीं तू मानस का अरे लार देख साधु संत काई कर गए मोती वालो सदा क्यों गो कोई मारे मनेर मकोनी करो कबीरदास।

सदासुकी काई के छ अरे इने काम एनी बेटाऊ न नाच को कीर्तन भजन करते डिग्री हिने छ 10 12 रुपया ले ले छ अंगु चलो जा उचलो जा खोद के बेटा ना तो काम करके कळ छ अरे खोदे ना आए कोंती रे पांच इंगली बरोबर छेनी हम कते दी आए जा हमें वैकुंठ वासी आलो।

तो ना लकड़ी ओढ़ तो सुतारे सौ जाणू सुतार छोलन बरोबर करत लोवा ओढ़ रोकन केन कतो लवारे कन जाणू छोलन वन को तपान कूटन बरोबर करत अरे तू ओळा वागरो तो बेटा कीर्तन भजन पोती प्राण सामना बरोबर सुदो वे जाय छे कन संगत करो रे सज्जन की बढ़त बढ़त बढ़त जाए संगत करे दुर्जन की तो घटत घटत नीचे आए संगत करी छेली गजकी मनमान फल खाए।

नामदेव महाराज कह रो रे सेना, अरे भगवान नाम ले लो रे, भगवान नाम ले लो रे, भगवान रा भगवान साई वेदा है तमे ना। अरे कहीं पड़े नहीं रे, कहीं कम पड़े नहीं रे तुम्हारे जिंदगानी ना।

0: सेवा की दिरे अनुसुया माता ब्रह्मा विष्णु महादेव तो चालना ये सता। अरे कली युगे माँ बनना की गीता
1: वाह भाई।
0: अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव आए अनुसुया घर नगी भिक्षा लाए माता भार नितो सत वाले जाऊं तार
1: देख रहा।
0: अरे अनुसुया माता गिरे घरे माई पति देवरो चरणरो पानी लाई तीनी देवे पर पानी छिटकाई। अरे तीनी रो तो बालक बनाई तीनी हाथ तीन हुंडा धारण माता पाने हलाई।

0: माता तार पेटे माते निकन तार थट्टा कोनी करू ए वेद पुराणे में से वाते सिसु को तन में क्यों
1: हां भाई
0: तारो देव कुण छे वेंडी तारो देव स्वर्ग में छेनी तारो देव पाताल में छेनी तारो देव पुदी पुराणे में छेनी तारो देव कतच जो बाई पतिव्रता देवे पर तार सता पतिव्रता रो भाव तारो

सेवा सेवा कना कांदे पाड नाच कोनी क्यों रे जन्म दिवाली माता तोन में अनुसुया माता कुणसी देवें धुकेन की थी कोनी की काय की दी वो ब्रह्मा विष्णु महादेव मानव रो भाई दानव रो देव रो भाई मानव रो बाहरी बातें सामने आए तो वो रो तो बरोबर करस कू फेरस भाई बाहर आरे मारो माटी तो बाहर कू फेरस भाई लोग देवे मारसे ना दोरी फिरवी ते भौरियाला दोरी फिरवी ते भौरियाला।

0: बाईने डिलेम देवा आवत छ
1: हां
0: बाईने डिलेम देवा राद भगत भी खेल छन वही खेल छ ठीक छ
1: खरो खर्च
0: अरे बाईर डिलेम देखु आवरे भा सरपंच रे बाई राईनी वाणी गुजर मारवाड़ी रे बाई डिलेम देवा आईनी ई सारी दाड़ो भाटा पाड़दाणी काल काबर वेरा आर दाड़े में एकड़ा अंगुली खिरवाड़े डेले डिलेम देव केवड़ी धरसारे वेंडो अरे लबाड़ लबाड़ लबाड़ लबाड़ ई माया च फसायो छ बाई जको काई करे छ बाई डिलेम देवारो अरे हूं हां करी एक छोरा हेट बैठो तो वो काई की दो बाई डिलेम तो देव आरोस को लागो 550 रुपया कड़े खसोड़ मिली छे उतरा पीसी काली दो को तो कला बाई काई कहे वालो छे
1: हां हां
0: के देता नहीं कन बैठो तो छोरा खाएंगे तो घाल दो पीसी हाथ में काड़े न गयो बाई काई कच गप्पे सोन डागने खाता गप्पे सोन मरियामा खाता ये डिलेम तो देव आरो ये ना काई भी पाड़ेगे तो गप्पे डणो पण लबाड़ छे माया बड़ी कटूर छे काट कली दो खावत छे अरे हकीम बिचारो कटकट दवा लगाओ अरे साधु सन उमड़ी मारन के गए बोमलुनी सांगे तुका बोमलुनी सांगे तुका नाम

0: आदि शक्ति तेज कचरा दुगो कुलचू तो
1: का
0: हजार सूर्या भड़थाणी
1: हाँ
0: अन वो आदि शक्ति पर जगन माता पर जो हजार सूर्या लेड जर फेंके
1: हवा
0: को तो हजार सूर्या सकर खान हेड पड़ जाते है वेंडी आउडी बिली देवी तार माई कु घुस जाती वे लबाड़ लबाड़ लबाड़ माटी आंग हुबो तो ये छोरा पिसी काली अगर काली दी पिसी और माटी काय के तरे
1: हां
0: हूं करी ना उ काय के लागो मार मालकन मन बलाडी श्री राम आयो यारी मद्दी करू छे एकच वच साटा खोदू एकच वच धूड़ पाडू एकच वच मनद्दी करे यारी या करो हाँ। बेटा तारो बरोबर करू बेटा तारो कल्याण करू बेटा तो डबल उनू बेटा वाया की दे जना ई माटी यरो देव माटी यरो माटी वाया की जना सात फेरा बना यरो माटी हो अब ये डीलर माई आओगो जना ये गोवर यारी हुई यरो बेटा हो
1: हाँ हाँ।
0: मसोबान गोनी छेनी सटवाई धनी छेनी
1: हसी
0: बाई दर वेजा है हाँ। खिलाड़ी कविता को भुकम वेगो तुगो टेम आओगो सा वो रे सारू तुगो भगवाने नाम ले लो मारे प्रभु रो नाम लेता नी चौरिया सी चुका लो।

0: मट्टी बाहर वास सामने कौन आओगे? ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुष्या घर आओगे। अनेक निरंजन भिक्षा आए भाई आले अति था मुरबर द्यावे मागे पुरे पहुन का तुकार महाराज के गोच करण केता ने भिक्षा भर लाने की याडी नूला ने कुल्या वाचो ढुंगली भिक्षा तार मायर कोठी में दिख हुई जुगाल ठीक से गे माई पति देव अंतरदशी सुतो तो गड़बड़े थी कि काय गलागो काय गड़बड़ चाल रोच गड़बड़ काय छे नी महाराज भार कोई तुई आए छ मन काय करे छ भूंगली भिक्षा घाल करे छ ऊ गलागो तारे माई वत चमत्कार दो करे लगा नमस्कार म काय करे आलो कोनी महाराज मोटो खेल से ही कोई बाकी नाक नाकेर छे नी तो न पूछता मोटो खेल से तू उठ हेड़ती हेड़ती उठाड़ वठाड़ बसार देनी पगे पर माथो मिल देनी पग धोनो पानी पील दी तीन ही देवे पर पानी मार देनी तीन ही देवे रावड़ा कोड़ा शिविर पीला नहीं वेगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ करे लाग पाले में घाल देनी हाथे हुंडा झला देनी पालनो हलाती बेसकी केर जरे पर बेटी आई वेंडी डीले माए तो कहीं कुर्सी देवे धोकिन गीती कहीं
1: कोनी कोनी
0: अये तू आसत भले धुनी पर माथो पटकले छी माटी कुं बोले छी माटी थी तो सुधो बोले मुंडो भरन बोल माटी ने एवडी धुणी धोकचन एवडी तुक माटी ने कोण बोले छे धोळसे मुंडे रा हरेगार जाबड़े रा मुरियामा खाईनी याडी पाड़ेनी हिरण काय मारसा मुंडो फ्रेंड जणीवी है काय सारी तांडे लान ये न घाल दू काई सारी तांडे लान घाल दू के जिन धुणी पर मातो पटके छी धुणी पर मातो पटका लोई काले दवा खाने माई जर मीना बरो सुती तो नियाडी साईवे ने करण के भाई।

0: नारद स्वामी चलो गोरे वो तो गिरजा साइत्रा लक्ष्मी कना ये वेंडी जावे ननका ननका छिछा करण पार मेरी झोली में जाना बलाला तुम्हारे पति देवे ना
1: खरोच खा
0: अरे गिरजा साइत्रा लक्ष्मी आई रे अनुसुईया माता कना ए जन्म देवाली चुकवे को हमारो पति दे दा हमें ना ले जा तुम्हारो पति ये बेटे ले जाओ वो के लागी प्रभु राम ले जामा बात खर्च मारो कालो तो ना तारो काबरो मन डिगरा दो भूल पड़ जाए कुंकरिया ए जन्म देवाली माता तू सड़गी हम हारगी हमारो पति हमने अंदर ए गिरजा इधर तारो भगवान शंकर ए साइत्रा इधर तारो ब्रह्मदेव ए लक्ष्मी इधर तारो विष्णु आशी धाटी महाराज होटो देखन लार देखन आंगन हास अजी नानके नानके शिचार करना के तो कहीं क्रिया आंगन के तो दो तीन ही वचन दे गए दत्तारो अवतार वेतानी मोहर गणेर माई जल में ली दे कोला प्रेम माई भिक्षा की दे घानगा प्रेम पांच मिनट बैस गए अनि निद्रा जुगा जी जुगो मोहर गणेर कर सा अपना खेल तमारवाई छात्री ताकन मारी जल में जड़ी माताम छ पर कहीं करूं लागत छ।

सेवा की दिरे सांडलिया माता। अरे तीनदार सूर्यान थमातानी ब्रह्मदेव कने ती। अरे वो तो पति देवे ने होटो लाई। अरे सूर्यान तीनदार थमाई।

0: छोरी व्यक्ति मायरी आंतरे भार दखाणू तलवारे धार वरो माला कसो ते वेंडी
1: कसो वेतो
0: गोड़े ती टांगे छेनी कुड़ी ती हाथ छेनी केला पासरो दुख कोड्यालो रे कोड्यालो वो कोड्याले ती वाया लागरो वो कोड्याले न काई करे प्रभु कर्म रेशा चुकावे चुकना बाण लागली रे जगजीवना ए कृष्णा मारे नसीबे मारो मारो मालक कालो रो आंधो रो लंगड़ो रो खुड़ो रो मारे नसीबे मसकन केन काई करे ओल्डी बसार ताणी वो कोड्याले उंगली घाल अन पाणन छेटी मेल द अन वो पाणी ने तीर पसी पीवा से बारह वर्ष दाड़ो सेवा की दी
1: वाह भाई वाह
0: बारह वर्ष सेवा की दे दार बाटी नाखती माई बेटी
1: हाँ
0: ये जो को बारह वर्ष पति देव बैठो तो वेशा ना मेरे बाई जो वर गली में इंजारी थी उन्होंने देख ली तो अन लंगड़ो खाई की दो गप से जो को सो गो मालकन बाटी माटी करता नहीं सांड लिया भाई आई ऊट पति दे बाटी खो खाऊ नहीं मैं का खाए सुनी का खाऊ नहीं जो को वसंत ये ले वसंत देख अपने घरे मुंडा गए जो को मखना ही कौन दी तो आज एक भाई की बाई रूपवान सा वो बाई सामन ले जो तो मैं बाटी खा लो नहीं तो मैं मर जाओ बाई के ला घोड़ो लंगड़ो जो लंगड़ो गामे की नीचे रे नहीं घोड़े ती टांगे छेनी कूनी ती हाथ छेनी कोनी कुचू तो अतरादार सेवा के दी मार निष्फल से निष्फल से जेती कुनस बाई से कहीं सो खो बाटी में जाऊं सू बाटी खरा देनी आर दारे मौलत ले दी अन बाईन धूण तानी काली दी अन बाईर घरे मुंडा अगर न मालूम था कहीं करे लागू गो

गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला पर एक दारू भाई काई की दी ई गोपाला गोपाला करे वाला कुण तक के वन पकड़ी दी काए छोरी काई कर रही थी भाई ए काई कर रही में कुछ है मन वचन द ये लो वचन काई कर रही थी इदे के भाई मारे घरे मुड़ा गए तू गीती के छे आर दारू के पच मारो मालक तो देख ली दो छ अन तू वो भाई साउ लेगी तो ठीक नहीं मैं फांसी खान मर जाऊं करे तो यारी मारो सोने सिर को माटी मर जाए येरो माटी सोने सिर को बे तो कहीं जल में देवाली माता गोरे थी टांगे छेनी कुणी थी हाथ छेनी केला नाई पाथरो जेने मारो सोने सिर को कियो सोने श्री केरी तम भी कहीं करो पगू पड़न कुचू हाथ जोड़न कुचू तुम्हारे नसीबे ना आंदो मोड़ो लंगड़ो मोड़ो खुड़ो मोड़ो आचो मोड़ो नसीबे रो खेल छ तो वो न मारो देवग्रह समझी तो तुम्हार स्वर्गीय माई घंटी बाज आए करण के तानी वो माटी ने जो वचन दिया वो खेला भाई कहीं हरकत छे नी तारो माटी मेल द मेल दू छू पण भाई ये नमूनारो छो कुमेलू ऊकेला मैं वेश्या छू मारे घर तो सावथन दस जाओ छ एक आनी टेमे ने फलाना कोडाओ घर तो आज को तो मारो धंधो पड़ जाए बंद यारी रात बार वाता लिया है पति देवेर सेवा करे सारू मालके ना जोकोवर विचा पूर्ण करे सारू वोल्डीम घाले तानी भारत जारी पण भगवान मारो नीला रंगेरो घणु खेड़िया छ देव घणु गोपाल कृष्ण घणु खेड़िया छ देव रंगारी रंगारी देव रंगारी रंगारी 16108 नारी भोग।

सवित्रा बाई सगाई करे सारू चार चार लोग गोला भेगे वो तो नारद स्वामी आगो अन सत्यवान सावित्री ने कहे के वेंडी ये सत्यवाने ती तारो वाया मत मत मत का बारह महीना मर जाओ छे वेंडी अन तुम तो दाड़ कू काढ़ीस बारह महीना मर जाओ छे ठीक छ मरगो तो मारे माई मारो पत जर खरो हुई तो मारे पति देर में उठाली और मने कह दी गोल पानी वेगो बारह महीना बारह दाड़े तुणी और लारा खनाई जुको लकड़ी निकी को नहीं वो दाढ़ी लकड़ी लावा वो लकड़ी फोना कन व्यसन निर्वाह चलावा एक दाड़ा अब इस पूर्णिमा से आदक बड़े पूर्णिमा कच उन दाड़ा जखो निकलो सत्यवान निकलो उन दाड़ा मातरम सवित्रा की मत तारला रहूँ चू मते मत मत मत दाढ़ी आई आज वो जगो कोनाई कोनी आई आज गुआ ची कोनी पति देव माऊँ चू मारा हट्टा त्रिपुरा ठीक से चले चलेगे चलेगे न पुनिमेर दाड़ो रह अत हट सा अत दे फाटा वे करेर माई एक फाटा उड़ेरो रह मारे झोलो सब को मर गो मरते खमात येम राजा लेता नहीं मायरो प्राण निकलो निकलो जना लारा लारा लारा लारगी होटो फरन देखो तो भाई चुड़ जाओ ए छोरी काई मांगे ची मांगे तो मैं देन तैयार छू महाराज मार सासू ससुर आंदे छे मार सासू ससुर आंदे छे मार सासू सरे आकी देनाक अतरी मांगनी तथास्तु।